सहस्रारो सुष्ठु वैशिष्ट्यम मश्या कथयतुं स्फुटं लक्षणं क्षियति भक्ति रुष्टमाया सतां मतं अन्नाभिलाषिता शून्यम्।